रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।

इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे किनारे पे आके।

तेरे होते हुए भी आज मेरा प्यार मुझसे जुदा है। मैं क्यों और कैसे मानूं, मैं कैसे कहूं तू खुदा है।

बस यही तो किया था कि हम जरा हौसला मंद हुए, फिर जिंदगी के दरवाजे क्यों हमारे लिए ही बंद हुए।

पैर थकेंगे, आंसू बहेंगे, जिंदगी में किसको मिला आराम है, न सोच सफर अभी कितना है, बस चलते रहना तेरा काम है।

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चिनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी

इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1800-180-7178 1800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जाने गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: ना लारी तू पर सूट रेशमी गेर चले तो भारी भीड़ लगारी तू।
1: एक बार चल गल पूरी सौ कर दूं रंग मेरा देख देख दूरी नौ दर तू फिर ना बोलेगी तेरा संग माड़ा तेरा संग माड़ा तेरा संग माड़ा।
2: अरे राम राम लड्डू।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, only on रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर, कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जाने गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
4: Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ है ये दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: Kom nou ja.
1: Je chan 90.4 FM har dil ke dhadkan mastar show what's up ji ha hardest frequency par mastar show what's up sath hi sath radio chan 90.4 show ka hissa banne ke liye 999-04-904 is the number aap call kar sakte hain whatsapp ya kar sakte hain text message हर दिल की धड़कन को जोरों से धड़काए अपनी बात हम तक पहुंचाए जी हाँ सरिया हक टू द हार्डेस्ट फ्रीक्वेंसी

0: Radio Chennai. Radio Chennai. Weather update.
1: दोस्तों रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर ब्रदर आज का वेदर
0: रेडियो चुनार वेदर अपडेट
1: जी हाँ, ये आपको बताते हैं क्या है आज का वेदर अपडेट, वेदर क्या कहता है, हम पहुंचाएंगे आप तक।
0: रेडियो चिन्ना,
1: मौसम बादलों से घिरा रहने वाला है आज। कल के मुकाबले 2 डिग्री टेम्परेचर कम। आज दिन का मैक्सिमम रहेगा 31 डिग्री सेल्सियस। बादल और बादलों के साथ साथ गरज बरस की भी संभावना है। जी हाँ, घड़घड़ और बूंदाबांदी भी हो सकती है आज। कल के मुकाबले कम। फिलहाल के लिए यूवी इंडेक्स मॉडरेट पर है। ह्यूमिडिटी 53%, विंड स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, विजिबिलिटी 14 किलोमीटर। आज का सनराइज हुआ 527 पर, आज का सनसेट होगा 747 पर। जी हाँ, डोंट बी अ मैनियक व्हाइल यू आर ड्राइविंग, प्लीज मेक श्योर यू आर ड्राइविंग विद सेफ्टी एंड सेंसेस। हर इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चुनाव 90.4 FM से हिट धड़काते रहो।

0: कौन आया?
1: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे,
2: व्हाट्सएप पे
1: तभी
3: वायरल ऑन शो व्हाट्सएप
2: रीजनल की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर वायरल है तो व्हाट्सएप पर आ ही जाएगा। व्हाट्सएप पे जी हाँ, वायरल ऑन व्हाट्सएप एक ऐसा सेगमेंट जहाँ पर हम आप तक पहुँचाते हैं जो भी वायरल रहता है। वायरल ऑन व्हाट्सएप में आइए आपको बताते हैं कंसर्निंग शॉकिंग वीडियो, क्योंकि एक बंदा जिसने ऑनलाइन क्लेम किया कि ऑटोज यानी बैटरी ऑटोज को बंद करने वाला ऐप एटीएम्स पर भी काम करता है। एक वीडियो जहां पर ये डिमॉन्स्ट्रेट किया गया कि BATBMS ऐप जो कि जाना जाता है ई रिक्शाज को बंद करने के लिए, अब एटीएम मशीन्स पर भी उससे टारगेट किया जा सकता है। अब वीडियो में दिखाई हुई बात कितनी सच है या झूठ ये तो हम नहीं जानते, बट वीडियो वायरल रहा, आ गया व्हाट्सएप पर। वही दूसरा कंसर्न ये भी है कि अगर ऐसा हो गया तो इस चीज का इस्तेमाल कितने खलनायक कर सकते हैं और किस तरह से लोगों का पैसा खतरे में आ सकता है। अब ऐसा नहीं है कि पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठेंगे, बल्कि इस पर रोक जल्दी लगाएगी, बस तख्ता पलटे की देर है। हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चैनल सिटी हट दिल कहते रहो।

0: Dios.
1: ¿Cómo la veo?
2: Dostlar öyle canlı 90.4 FM sonra Hırtılkı Türk'ün Hırtılkı'nı Mek Dırk'ın Mastar Show What's Up
0: Cüz
2: Ben Hucak Zeus Sarı Dıper ki baybaştan yapıyor Hım Yuhi Cüreret'e Her Rus Gidir Ağaç Biyeceğim Infotainment ki Vat Ağaz Ke Saat Her Rus Ka Saat Aap Ne Hene Bana Apeni Bat Koye Hım Tık Pohçana 888-99-0904 Is The Number और यहां पर अमरनाथ यात्रा 2026 से रिलेटेड एक अपडेट जी हां यह पावन सफर जो कि 57 डेज के लिए तय किया गया है 2026 में 3 जुलाई से स्टार्ट हुआ और कंक्लूड किया जाएगा 28 अगस्त को और यहां पर गवर्नमेंट की तरफ से एक रिक्वेस्ट जो भी अनरजिस्टर्ड यात्री है वो प्लीज रूट्स की तरफ प्रोसीड ना करें बल्कि प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के साथ ही आगे बढ़े Due to heavy crowds, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है और लोग जो है इस टाइम चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं कि भैया गवर्नमेंट ने तत्काल रजिस्ट्रेशन वगैरह देखिए रूल्स या जो भी गाइडलाइंस है वो डिसाइडेड थी पहले से डिसाइडेड है देयर इज नो मीनिंग कि आप इस टाइम शोर मचा कर ये कोशिश करिए कि हमें तत्काल रजिस्ट्रेशन मिले या जो तत्काल रजिस्ट्रेशन है गवर्नमेंट ने पहले ही बताया था कि इसको लिमिटेड सीट्स के लिए लिमिटेड लोगों के लिए लिमिटेड काउंट के लिए रखा गया है और ऐसा नहीं कि वहां पर पहुंच के ही देख लेंगे उससे आपको भी दिक्कत हो सकती है और दूसरों को भी 15 से 20 डिग्री का टेम्परेचर रहने वाला है जो भी अमरनाथ यात्रा का ये पावन सफर तय करने वाले हैं और रात को टेम्परेचर जो है डिप करके फ्रीजिंग महसूस होगा और वही अगर हम आज आफ्टरनून की बात करें तो रेन शावर्स आर एक्सपेक्टेड तो जो भी गाइडलाइंस एसओपीज हैं उन्हें फॉलो जरूर करें और साथ ही साथ ट्रैक्स पर चलते हुए जो भी हिदायत दी जाए उसको फॉलो जरूर करें टीम रेडियो चना 90.4 एफएम आपका सफर सुहाना हो आपकी यात्रा सफल हो हर दिल की धड़कन रेडियो चना मैं हूं जागजीत सब सुन रहे मजेदार शो व्हाट्सएप से धड़काते रहो

आपका साथी आशीष सर शो में वक्त हो चला कि आपके पढ़े हुए भेजे हुए मैसेज पढ़कर आप तक पहुंचाएं। अब पढ़े हुए भेजे हुए ये तो फंबल इतना चलता है। देखिए रेडियो चैनल पर हम जब आपसे जुड़ते हैं तो रियल टाइम में जुड़ते हैं और लाइव जुड़ते हैं, तो इतना जबान जो लड़खड़ा जाए तो संभाल लेना मेरे दो। सो फिलहाल पते की बात यह है कि 8899 0049 0049 नंबर इस तुहद दिलन वान से आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज और अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। जी हाँ, हमारे साथ सानिया जुड़ी है। सानिया लगती है सर फर्स्ट टाइम मैसेज कर रही हूँ, आपका शो अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। रेडियो चुनार अच्छा लगता है, उसके लिए भी थैंक यू। सोशल मीडिया पर भी फॉलो करती हूँ, थैंक यू सो मच। ऐप के थ्रू सुनने में बहुत आसानी होती है, जहाँ भी जाती हूँ रेडियो चुनार सुनती रहती हूँ। आज पहली बार मैसेज कर रही हूँ, शो में शामिल कीजिएगा। कर दी सानिया मैसेज शामिल, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। इरफान हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं इरफान सर आज की सोसाइटी के बारे में आपका क्या कहना है। देखिए सोसाइटी तब बनती है जब हम इस सोसाइटी को कारगर बनाएं। तो एज एन इंडिविजुअल हमारी जिम्मेदारी है कि गाड़ी के उन पहियों की तरह एक्ट करें जो कि गाड़ी को चलाते हैं, बेहतर बनाते हैं, अच्छे सफ़र पर ले जाते हैं, तो तभी तो यह सोसाइटी कहने के लायक होगी। आई होप आपको आपका जवाब मिल गया इरफान, थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। 8899 0049 0049 इज द नंबर, आप कॉल करें, व्हाट्सएप या टेक्स्ट मैसेज या डीएम कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर ज्यूस द बैड बॉय ऑफ रेडियो के नाम से मिलूंगा। जी हाँ, व्हाट्सएप शो और व्हाट्सएप शो में आज हम बात करने वाले हैं ऑफिस कल्चर इन इंडिया, ये रहेगा आज के शो का टॉपिक। अब जब भी हम इंडिया के ऑफिस कल्चर की बात करते हैं, अक्सर आपने भी देखा होगा कि कितनी सारी रील्स, कितने सारे मीम्स जो मैनेजर्स पर बनाए जाते हैं, ऑफिस कल्चर पर बनाए जाते हैं, और कितनी सारी दोस्ती यारी है जो ऑफिस में पनपती है, और जैसे ही कोई दोस्त ऑफिस छोड़कर दूसरे ऑफिस में चला जाता है तो वो कुर्सी कभी खाली लगती ही नहीं, क्योंकि हमेशा लगता है कि वो आसपास ही है। दिल दिमाग इस तरह से जुड़ा रहता है कि इंसान सोचता है कि घर जाऊं या ऑफिस में रहूं, क्योंकि जहां पर आपको टीम अच्छी मिलती है, जहां पर आपको मैनेजर्स अच्छे मिलते हैं, तो जाहिर सी बात है ऑफिस भी घर बन जाता है। लेकिन ये ऑफिस कल्चर का हिस्सा तो है, लेकिन ऑफिस कल्चर ऐसा नहीं है, जहां धूप है वहां छांव भी है रे। अब क्या है ऑफिस कल्चर, क्या है ऑफिस कल्चर से रिलेटेड फैक्ट्स, क्या है वो खुशी जो जब सैलरी आते ही पिंग की आवाज आती है तो आपका दिल जो उछल पड़ता है, तनख्वाह चाहे मिटाओ वन्या करो हो वन्या करो। सो व्हाट्स द ऑफिस कल्चर इन इंडिया, आज इसी के बारे में होगी बात। हॉट इस फ्रीक्वेंसी और दिल की धड़कन, मैं हूँ जॉक्स, धड़काते रहो

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।

0: साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।
1: छोटा लंदन, जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
0: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
1: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
0: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
1: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
0: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
1: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
0: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464-1800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

Chinar Beats ve Darje Diva only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: Kom ona ja.
1: Princesi Drake के साथ आज के लिए इजाजत लेना चाहूंगा. This is signing off for today. आपसे जुड़ने वाली आर जे दीपा कुछ ही देर में. शो का नाम रहेगा चिनार बीट्स, where you'll get to hear, experience and feel beats on repeat. And कल मुलाकात होगी अगर खुदा चाहे तो. Till we meet again, keep your heads high, walk tall and always remember that I love you all. Bye bye, tata, take care, khush bash, ma salama.

Chinar Beats ve Dhar Chediva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

बीस ऑन रिपीट शो चुनाव और बीस अब इंजॉय कर रहे हैं ओनली ऑन रेडियो चुनाव 90.4 FM. ढेर सारी बातें हो रही है, मस्ती मजाक, फन, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट के अलावा ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है. सम सुपर एक्साइटेड हमेशा की तरह. देखिए हमेशा एक नए दिन की शुरुआत एक बेहतरीन थॉट के साथ, और बेहतरीन थॉट मेरे थॉट्स तो बहुत सारे हैं. अब आपके थॉट्स क्या है, क्या थी शुरुआत, क्या आपको लगा कि कुछ डिफरेंट था, और क्यों लगता है ऐसा कि मन नहीं होता है, क्यों नहीं लगता है हमारा मन. मन चंचल है बट फिर भी मन का वो ठहराव होना, मन को समझना, मन की बातें हम एक दूसरे से कर सकते हैं. अब मैं ये नहीं कह रही कि मन की बात दीबा के साथ, बट हाँ आप अपने दिल की बात पहुंचा सकते हैं वहाँ वहाँ तक जहाँ जहाँ तक पहुँचती है रेडियो चुनार की आवाज़. तो 8888-9049-04 पर कॉल कीजिए, टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए, और गलती ना हो जाए, लत तो लग चुकी है और ढेर सारी बातें अभी बाकी है. शो चुनार बीट्स मैं हूँ दीबा, आप सुन रहे हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुनार 90.4 FM, हर दिल की धड़कन.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: हाय, मैं हूँ आरजे दीवा और आप सुन रहे हैं रेडियो चना 90.4 FM।
1: मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
0: Hum hai team Radio Chunar 90.4 FM and we care for you.

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना है ये दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

बीस ऑन रिपीट शो टू नॉन बीट्स आप एंजॉय कर रहे हैं ओनली ऑन रेडियो टू नॉन 90.4 FM. ये सारी बातें हो रही हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट कि कश्मीर की सक्सेस स्टोरी आखिर कैसी है. ये कश्मीर जिससे हम उसकी खूबसूरती के बारे में जानते हैं कि खूबसूरत पहाड़, डल और झील, यानी कि हर एक चीज़ यहाँ पर खूबसूरत है. मेहमान नवाजी से लेकर यहाँ का फूड, यानी कि हर एक चीज़ जो है ना, हर एक चीज़ में कोई ना कोई कहानी है. लेकिन एक ऐसी कहानी जो यहाँ के लोगों से जुड़ी हुई है, लोग जिन्होंने कश्मीर का नाम रोशन किया, अपने देश का नाम रोशन किया है, चाहे फिर वो एंटरप्रेन्योरशिप हो या फिर कोई अचीवमेंट हो या फिर सोसाइटी में कोई ऐसा काम करके उन्हें दिखा दिया है कि हम कश्मीरी चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं. तो क्या है कश्मीर की सक्सेस स्टोरी, कौन से ऐसे लोग हैं जिसने कश्मीर को सक्सेसफुल बनाया है, उस बारे में हम बात करने जा रहे हैं. आप भी शो का हिस्सा बन सकते हैं 8999-0409-04 पर. आप शो में साथ दे सकते हैं टेक्स्ट व्हाट्सएप करके, आप शो चुनाव भी इसका हिस्सा बन सकते हैं.

Chinar Beats with Harsh Deepa, only on Radio Chinar 90.4 FM.

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर

0: छोड़ के जाने लगा।
1: देखिए जाना तो पड़ेगा बट ये सिर्फ शो छोड़ के, बल्कि मैं यही पे हूँ आपके साथ शो म्यूजिक ऑन डिमांड का आगाज करने के लिए। मैं तैयार हूँ। सोबी के लिए हमारे लिए सबसे बढ़कर हमारा शो म्यूजिक ऑन डिमांड है, जिसमें आप अपने फेवरेट ट्रैक सुनते हैं। 8899904904 पर कॉल कर सकते हैं आप, टेक्स व्हाट्सएप करके अपनी फरमाइश पूरी करके आप इस शो को एंजॉय कर सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, शो की शुरुआत हो चुकी है और आप अपने पसंदीदा ट्रैक सुन सकते हैं ओनली ऑन रेडियो चुनाव 91.4 FM।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

राबे की रिक्वेस्ट आई है इस ट्रैक के लिए, आप भी एंजॉय कीजिए। आप अपने फेवरेट ट्रैक्स की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं 8899904904 बिकॉज शो म्यूजिक ऑन डिमांड। आप एंजॉय कर रहे हैं ओनली ऑन रेडियो चुनाव 90.4 FM। जल्दी से अपनी रिक्वेस्ट हम तक पहुंचाइए। नंबर फिर से रिपीट कर रही हूँ, 8899904904। आप टेक्स व्हाट्सएप करके शो में शामिल हो सकते हैं और शो म्यूजिक ऑन डिमांड को एंजॉय कर सकते हैं।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
0: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: खामोशियाँ,
0: जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
0: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्दी।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।
2: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
3: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे,
2: बोलेंगे जरूर बोलेंगे,
3: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
2: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
3: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
2: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चनार 90.4 FM।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हो चुका है जहाँ पर मैं अकेली नहीं होती हूँ बल्कि मेरे साथ होती है मेरी होस्ट और दोस्त यानी कि को-होस्ट जिसका नाम है असरा जो कि हंगामा शो की मालकिन है।
1: ओके दैट वाज अ रियली गुड इंट्रोडक्शन।
0: या

0: हमने शो शुरू हो चुका है रेडियो गर्ल्स, जहाँ हम अपनी कंपेनियंस, अपनी सहेलियों के बारे में बात करते हैं।
1: बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही वापस से जवाब दे सकती, आप भी दे सकते हैं। देखिए, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जहाँ पर आपकी राय बहुत ही ज्यादा मैटर करती
0: बिल्कुल,
1: है।
0: बिल्कुल,
1: तो हम बात कर रहे हैं, आप भी करेंगे, मजा आएगा। और क्यों मजा आएगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि जब हम घर गृहस्थी के बारे में बात करते हैं, जब हम अपने घर के बारे में बात करते हैं, अपने घर की लेडीज के बारे में बात करते हैं, तो क्या है विमेन एट होम, ये टॉपिक देखिए कितना गहरा है।
0: एग्जैक्टली, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है ये कि हम घर के बारे में बात कर रहे हैं। इवन तो बहुत सारी जो व्हाट वी कॉल इट सीडो फेमिनिज्म में बहुत ही वो टाबू है कि एक लड़की को घर के साथ मत जोड़िए। क्यों वो सिर्फ इसीलिए बनी है, बल्कि एक दूसरा पर्सपेक्टिव है जो बहुत ही खूबसूरत है कि कैसे एक लड़की इस एक मकान को घर बनाती है।
1: बिल्कुल, और मुझे लगता है कि वो कहते हैं ना कि जिस मकान में एक औरत ना हो वो घर घर नहीं लगता।
0: बिल्कुल,
1: है
0: बिल्कुल।
1: वो घर ऐसा अधूरा लगता है, बस चार दीवारें होती है और सुनसान लगता है। कभी कभार लोग भी ऐसे कहते हैं कि भाई का हिसाब है।
0: सो
1: इट्स ऑल विमेन एंड Women, because women oriented show है ये, but yes, आप ज़रूर बोलिएगा कि आप कैसे support करते हैं अपने घर में लड़कियों को, और कितना ज़रूरी है कि जब हम women को specially अपने घरों में appreciate करते हैं, उनके काम को सराहते हैं, तो कितना ज़्यादा चेंज आता है हमारी सोसाइटी में, हमारे माइंडसेट में, और कितने खुश रहने लगते हैं हम एक्चुअली।
0: बिल्कुल, बहुत ही खुशी से खुश रहने की बात कर दी है दीवाने, और दीवाने ये भी आपको बता दिया है कि कैसे जुड़ना है। 8899044 इज नंबर, यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप, और बन सकते हैं इस हॉरस फ्रीक्वेंसी का।
1: बिल्कुल, शो रेडियो गर्ल्स है, आपकी रेडियो गर्ल्स आपके साथ है।

0: खामोशियाँ। जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4।
2: शो रेडियो गर्ल्स आप एंजॉय कर रहे हैं ओनली ऑन रेडियो चुनाव 90.4 FM। ढेर सारी बातें हम कर रहे हैं आपके साथ। अब घर की बात हो रही है और घर घर की बात तो हमारी भी है। आप भी हमारा घर ही है। क्यों असर, ऐसा लगता है ना कि हम कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पर आगे।
1: हाँ वो तो होता ही है ना, स्पेशली द पार्ट दैट कम्प्लीट द शो इज द ऑडियंस। एंड बहुत अच्छा लगता है।

0: करके और आज का टॉपिक ही कुछ खास है कि वुमेन एंड होम।
1: यस, क्योंकि देखिए एक घर तभी घर लगता है जब उसमें एक औरत होती है, और औरत है तो वो कहते हैं ना कि आपके काम छूट ही जाएंगे कि आप एक औरत के बगैर वो चीज़ें नहीं कर सकती। हाँ। वो जो मल्टीटास्किंग करती है, ये सच है कि हम आज मेड रखते हैं या फिर केयरटेकर रखते हैं, बट वो जो अपनापन जो एक लड़की देती है अपने घर में, मैक्सिमम टाइम जो वो स्पेंड करती है और वो जो दिल से चीज़ें करती है, मैनेज करती है, हर एक का ख्याल रखती है, आई मीन दैट कम्प्लीट्स द होम। यानी कि उनकी प्रेजेंस ही वहाँ पर वो ऐसा दिलाती है कि ये घर घर है।
0: बिल्कुल, घर घर है। और मुझे ऐसा लगता है दीपा कि घर हमेशा घर, सबसे पहले अगर हम रिश्तों की बात करें, वुमेन घर पे हमें कौन से रिश्ते मिलते हैं, हम बात करें हमारी मदर की, जिस दिन फॉर एग्जांपल हमारे घर पे बहुत भार ऐसा होता है कि मोच का सा गुण माता माल का सा या सालस का सा अश्चुनी माँ आए
1: की,
0: ऐसा लगता है कि कोई चीज नहीं मिल रही, समझ नहीं आता कि,
1: और परेशान हो जाते हैं
0: इसके अलावा हम बहन की बात करें, वो भी एक रिश्ता है, बहुत खूबसूरत रिश्ता है। खासकर भाई बहन का रिश्ता होता है बहुत नोक छोक वाला होता है, बट सबसे ज्यादा प्यार भी वही होता है। अगर आपके घर से आपकी बहन दूर होती है, आपसे आपका सिबलिंग दूर होता है, तो बहुत बुरा लगता है, उनकी याद आती है, घर अधूरा सा लगता है।
1: बिल्कुल।
0: अब फिर वाइफ बेटी सारे ऐसे रिश्ते हैं वुमेन हु मेक द होम फील लाइक होम
1: यस। और आपने रिश्तों की बात की ना, तो मुझे लगता है कि रिश्तों को जोड़कर भी एक औरत ही रखती है।
0: बिल्कुल।
1: अगर आप एक मर्द की बात कर लेंगे तो ही इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो बिल्कुल वो प्यार करते हैं, बट कभी कभार लेस एक्सप्रेसिव होने के कारण वो चीज़ नहीं समझ आती है कि सामने वाले, लेकिन एक लड़की जो होती है ना, उनको पता होता है कि अगर सामने वाला रिश्ता है उनको जोड़ के रखना है, और वो कैसे होगा, एफर्ट्स से, यानी कि वो मर्द से भी करवाती है, हर एक से करवाती है, खुद भी करती है, यानी कि रिश्तों को जोड़ने का काम भी, यानी कि बॉन्ड्स बनाती है एक औरत। और वही तो है घर, घर कम्प्लीट लगता है जब आपके इर्द गिर्द बॉन्ड सही हो, आपके फैमिली मेंबर्स का हर एक चीज, वो कहते हैं ना उनका हर एक तरीका सही हो, और वो सिखाती भी एक औरत ही है। यानी कि हमारे इमोशंस, हमारे रिश्ते, एक औरत के बगैर, वो तो सच है ना कि एक औरत के बगैर ये संसार कुछ नहीं है,
0: कुछ भी नहीं।
1: पर मैं कहती हूँ कि एक घर घर दिखता ही नहीं, आप वो लगता ही नहीं कि हम किसी घर में रहते हैं, उसमें औरत ना हो, उनका वजूद ना हो।
0: ये चीज बहुत खूबसूरत है जब इस बारे में सोचते हैं। और मुझे ऐसा लगता है घर सिर्फ घर नहीं, बल्कि घर वो मोमेंट्स है जब सब लोग साथ में बैठ कर खाना खाते हैं, एक दूसरे को सलाह मशवरा, या वो चीजें होती हैं कि डिसीजंस लिए जाते हैं, अच्छा अब क्या होगा जिंदगी में आगे, तो वो सारी चीजें घर बनाता है। और इन सब चीजों को, इन मोमेंट्स को जोड़ के एक माँ बहन बीवी बेटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाती है।
1: बिल्कुल, असरा कोई माने ना माने, मुझे लगता है कि डिसिप्लिन जो है वो एक औरत ही लाती है। और यानी कि जब हम देखते हैं ना घर का हाल होता है एक औरत के बगैर, फिर तो भाई वो समझ आता है कि नहीं, कि औरत ही है जो हर चीज में, यानी कि वो खुद भी करती है साफ सफाई, हर एक चीज, यानी कि उन्हें हर एक चीज परफेक्ट, बट अपने लिए नहीं, पूरे घर के लिए।
0: घर के।
1: सो औरत का एक घर में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हम बात कर रहे हैं घर गृहस्थी के बारे में, घर के बारे में एक औरत उसे मुकम्मल करती है। अब हमारा मुकम्मल टाइम तो आ ही चुका है, हम तो जा रहे हैं यहाँ से, पर मैं अकेले जा रही हूँ, हम नहीं जा रहे, क्योंकि असरा से घूर के देख रही है ना कि भाई मेरा तो शो है हंगामा।
0: हाँ, वही मैं सोच रही थी कि मुझे कहाँ जाना है।
1: यस, तो आप शो हंगामा एंजॉय करने जा रहे हैं, फिलहाल के लिए मैं चली अपने घर की गली, और घर नहीं जाऊंगी, बस थोड़ी देर यही रहूंगी। असरा अभी ये कह रही है कि देखिए आप जा नहीं सकती जब तो मेरा शो खत्म ना हो, तो एक साथ जाएंगे हम भी, तो हमारा भी तो बॉन्ड है। सो ये बॉन्ड्स हमारे बनते हैं रिश्तों से, और जैसा कि आपको हमारा रिश्ता है ये खास बनता है आपके साथ से। फिलहाल के लिए साथ खत्म होता है, जाते जाते ट्रैक आप एंजॉय कीजिए। मैं हूँ दीवा, साथ है असरा, आप सुन रहे हॉट फ्रिक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो 90.4 FM है, देख के धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

लगे दीदी हो या जीजी हो, पर ये तो ट्रू फैक्ट है जी कि शो शुरू हो चुका है, हंगामा जहाँ होता है, भरपूर ड्रामा, एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, क्या बजिंग है, और लाइफ का ऐसा फिलोसॉफिकल टच जो सिर्फ यहीं मिलता है. शो शुरू हो चुका है जहाँ बहुत कुछ अभी बाकी है. बराबर 4 तक आपका और मेरा साथ बना रहता है, और आते आते ही प्ले होता है कुछ खास, कुछ क्रेजी.

मैं मास्टर सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM. ये है दिल की धड़कन और कुछ ही ट्रैक से बाद वापस आऊंगी. यही तो काम है हमारा कि वापस आके और भी बातें बताऊंगी, अपडेट से लेकर इन्फॉर्मेशन, ट्रेंडिंग क्या है और आज का टॉपिक. मैं मास्टर सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM.

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 एफएम। ये है हर दिल की धड़कन। और आज शो हंगामा पे अभी हम बात करने जा रहे हैं फ्रेश की, क्या ट्रेंडिंग है, लोग किसके बारे में अभी बात कर रहे हैं सोशल मीडिया में, एंड अ रीसेंट रिलीज अल्फा मूवी जिसमें कास्टेड है बॉबी देओल, ऋतिक रोशन, आलिया भट्ट, शर्वरी। एंड देखिए शर्वरी, दिस इज अ स्पाई वर्ल्ड मूवी, सो बहुत सारे स्टंट्स थे, बहुत सारी चीजें हो रही थी, एक्शन फुल धमाका। बट अगर बात करें शर्वरी और आलिया भट्ट की, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम अपने सारे स्टंट्स खुद कर रहे थे, बट एक BTS वायरल क्लिप में पता चला है कि शर्वरी तो अपने स्टंट्स खुद कर रही थी, पर जो हमारी आलिया है वो अपने बॉडी डबल इस्तेमाल करके खुद साइड में बैठ के कॉफी पी रही थी। डेफिनेटली वो बस दूर दूर रह के स्टंट देख रही थी और उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, और अभी वो काफ़ी ट्रोल हो रही है, एंड वो अभी काफ़ी ट्रोल हो भी रही हैं और वो होना नहीं चाहती हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी कॉन्ट्रोडिक्टरी थिंग कि उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा कि मैं खुद अपने स्टंट्स कर रही थी बट वो कर नहीं रही थी। मैं हूँ असरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM, और आप बताइए कि क्या आपने अल्फा मूवी देखी, कैसी लगी आपको। मैं हूँ असरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM, ये है हर दिल की धड़कन। सोनी तेरी मेरे वाल हुण तक दी नहीं।

Welcome back to Show Hangama, only on Radio Sonar 90.4 FM, and this is the time for Railway Update. And today's update is that whatever trains scheduled hai, they are as per the summer timetable, and you can avail the summer timetable through the official Railway Indian Railway apps, that is Rail One. और एक और अपडेट रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन, बट उस वजह से कोई भी डिले इन द ट्रेन्स नहीं है. जो एक्स्ट्रा यूजुअली जो कश्मीर रेलवे लिंक है, दैट इज़ यूनि डायरेक्शनल, दैट इज़ वन ट्रैक, बट ऐसी प्रपोजल आगे गया है कि अभी ये बाय ट्रैक या और भी ट्रैक इसमें बन रहे हैं ताकि ईजी वे हो, क्योंकि इसी वजह से, बिकॉज दिस इज़ द ओनली ट्रैक, एक ही ट्रैक पर सारी ट्रेन्स चलती हैं. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि उस वजह से ये जो एक प्रॉब्लम है ट्रैवल करने में, जो कम्यूट करने में लोगों को होती है या डिले होती है ट्रेन्स, वो इसी वजह से होती है, क्योंकि बाकी ट्रेन्स, अगर एक ट्रेन फ्लो हो रही है बाकी ट्रेन्स फ्लो नहीं हो सकती. सो उस चीज़ पे काम किया जा रहा है, एंड दैट इज़ अ रियली गुड थिंग फॉर अस, एंड दिस इज़ द अपडेट फॉर टुडे. और अगर आप चाहते हैं कि लाइव लोकेशन ऑफ द ट्रेन्स बिटवीन स्टेशन पता चले, वो आपको पता चलेगा द रेल वन ऐप.

0: मैं हूँ आरजे सू।
1: हेलो, मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय, मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: बजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: हाय मैं हूँ असरा और आप सुन रहे हैं रेडियो सुनार 90.4 FM एंड दिस इज जस्ट अ रिमाइंडर कि कुछ ही ट्रैक के बाद हम बात करेंगे कि आज का स्पेशल टॉपिक क्या है एंड द मोर इम्पोर्टेंटली यू कैन बी द पार्ट ऑफ द शो 8899-0494 इज द नंबर यू कैन कॉल मैसेज टेक्स्ट व्हाट्सएप। मैं हूँ असरा सुन रही है रेडियो सुनार 90.4 FM क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन।

0: अरे वेलकम बैक इसी ऑटिस फ्रीक्वेंसी पे अभी चल रहा है शो हंगामा ड्रामा और आज का टॉपिक ये पेश है। आज का टॉपिक इज अबाउट इंडियन जॉइंट फैमिलीज, दादा दादी पापा मम्मी अपने जो भाई बहन हैं, चाचा चाची उनके बच्चे और इतने सारे लोग, इसे जिला घोषित क्यों नहीं कर देते। बट ये जिला नहीं बल्कि जॉइंट फैमिली, इंडियन जॉइंट फैमिलीज होते हैं जो एक्चुअली पेट्रोलोकल होते हैं, यानी कि मेल डोमिनेटेड होते हैं। देर आर अ लॉट ऑफ सोसाइटीज़, एंशियंट सोसाइटीज़, जो पुरानी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे मेट्रोलोकल एक सिस्टम है। और अगर इंडियन स्टेट की बात करें तो मेघालय इज़ द स्टेट जहाँ मेट्रोलोकल सिस्टम है, यानी कि शादी करने के बाद लड़का लड़की के घर जाता है बल्कि लड़की लड़के के घर नहीं जाती। पर अभी जैसे कि हम इंडियन जॉइंट फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं कि बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, बहुत सारे कॉन्स भी हैं। सबसे बड़ा जो हमें कॉन मिलता है दैट इज़ प्रिवेसी का, यानी कि प्रिवेसी के नाम पर कुछ होता नहीं है और जो टाइम आपको स्पेंड करना होता है, आपकी बहुत अच्छी फैमिली होती है, बड़ी फैमिली होती है, जो भी एक्सपेंसेस हैं वो इक्वली डिवाइड हो जाते हैं, एक फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटी नहीं रहती है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात कि एक पर्टिकुलर जो फैमिली रहती है, फॉर एग्जांपल मदर फादर एंड द चिल्ड्रन, दे डू नॉट गेट दैट प्राइवेसी। और इसके बारे में और भी बातें करेंगे हम, क्योंकि अभी अभी कुछ देर पहले हमने शो शुरू किया था और अभी हम बात कर रहे हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो आप भी जुड़ जाइए, बन जाइए शो का हिस्सा। आपका क्या एक्सपीरियंस है जॉइंट फैमिली का? आपको न्यूक्लियर फैमिलीज पसंद है कि जॉइंट फैमिलीज?
1: से निकल जाते हैं।
0: मैं सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM। ये है हर दिल की धड़कन।

0: जेसूस।
1: हेलो, मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय, मैं हूँ आरजे असरफ।
3: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: जे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: हाय, मैं हूँ असरा और आप सुन रहे हैं रेडियो सुनार 90.4 FM। और आज बात हो रही है इंडियन जॉइंट फैमिलीज के बारे में। और देखिए, हर चीज़ का एक मॉडर्नाइजेशन एवोल्यूशन ज़रूर हुआ है। और वैसे ही अगर हम बात करें 2011 के जो सेंसस है, अभी का जो मॉडर्न एवोल्यूशन है फैमिलीज़ का, लॉट ऑफ पीपल लॉट ऑफ फैमिलीज प्रेफर कि वो न्यूक्लियर फैमिलीज में रहे, यानी कि जॉइंट फैमिलीज में अभी प्रेफर नहीं करते हैं लोग रहना, बिकॉज बहुत सारी जो कॉन्स हैं वो भी बर्दाश्त नहीं होता है लोगों को। आपने कई बार घर पे सुना होगा कि आज जो मुझ बर्दाश्त कम, जो कि एक्चुअली एक सच बात है। एंड मोर ओवर आजकल रिश्ते सही रहे, बॉन्ड सही रहे, उससे बेहतर है उसके लिए न्यूक्लियर फैमिलीज़ को एक तरजीह सोसाइटी में ज़रूर मिली है। अलग रहना लोगों को बेटर लगता है, प्राइवेसी मिलती है, अपनी फैमिली को टाइम देना पड़ता है और एक स्टेबल पोजिशन। बट जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, और इस चीज़ का ये कॉन है कि आपकी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो सारी आप पर डिपेंड करती है। और अगर गॉड फॉरबिड you are not able to complete it, you are not able to do it properly, तो आपको rescue करने के लिए nuclear family में कोई नहीं होता, आपको मदद मांगने की जरूरत पड़ सकती है। आप भी बताइए आपका इस बारे में क्या ख्याल है। 8899-904-904 is number, you can call, message, text, WhatsApp। मैं हूँ असरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन।

0: मैं हूं आदिसिस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।
2: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
3: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे,
2: बोलेंगे जरूर बोलेंगे,
3: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
2: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
3: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
2: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

कि अभी तो लापता होने का समय नहीं, टाइम और समय आ चुका है। देखिए इतनी जल्दी है मुझे जाने की, क्योंकि जब मैं अभी जाऊंगी कल तो जल्दी वापस आऊंगी। 4 बजे वाले हैं आपके और मेरा साथ यहीं तक था, कल वापस आऊंगी बराबर 2 बजे करने आपको एंटरटेन, हंगामा, ड्रामा और क्या क्या होता है यहाँ। मैं हूँ अस्टा और जाते जाते बस यही कहना चाहती हूँ कि अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रेजी करते रहिए, क्योंकि जब तक क्रेजी नहीं होगा मजा कैसे आएगा। और देखिए जाते जाते बस इतना ही, और अपना ख्याल रखिए। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, ओवर एंड आउट।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1800 180 7178 1800

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026, जय बाबा बर्फानी।

Jeremy. Chinar Beats with Harsh Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4-4-6-4 1-8-0-0-1-8-0-7-1-7-8 1-8-0-0-1-8-0-7-1-9-9 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: bigger. Only on Radio Chinar 90.4. I feel good. A new vibe for the lovers of Western music with me, RJ Zeus.
1: छत पक्षियां रंगा दी धूप बरसाती सुन रंग धरती का गोटे रंगा है लहरिया वो दोनों को ही चाहते।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपुरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM। स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है, और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कॉपरेट करते और इस बात का सबूत दे

0: करते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी. तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाए, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है. हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू.
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम.
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
2: 90.4
1: FM. रेडियो चिनार 90.4 FM पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम बॉलीवुड के खान्स के नाम.

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम बॉलीवुड के खान्स के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम बॉलीवुड के खान्स के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 FM पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम वीरू यानी धर्मेंद्र के नाम।

जान को लगाती ना प्रेम का रोग पुराना पुराना पुराना है जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा किसी बात न जाना।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम वीरू यानी धर्मेंद्र के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम वीरू यानी धर्मेंद्र के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम। और आज की सुहानी शाम वीरू यानी धर्मेंद्र के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम वीरू यानी धर्मेंद्र के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम वीरू यानी धर्मेंद्र के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम वीरू यानी धर्मेंद्र के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम वीरू यानी धर्मेंद्र के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम वीरू यानी धर्मेंद्र के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: Hum hai team Radio Chunar 90.4 FM and we care for you.
2: Dil ko karar aa jaye jab bhi aaye suhani shaam, dabi yaadein महक जाए जब भी आए सुहानी शाम। सुनिए सुहानी शाम सिर्फ और सिर्फ रेडियो चुनाव 90.4 FM।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम जितेंद्र की है।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम जितेंद्र के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4
1: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: महक जा रही।
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर

दिन, आराम, राति, सुबह, दोपहर और शाम, छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं। देखो ना, दर्द, ठेस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल।

0: 90.4 FM.
1: दिल को
0: करार आ जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
0: 90.4 FM।

0: नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बात, एक बात, लेकिन एक बात।

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप ही ने सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कही ना।
2: सा सा रे ग म प म ग म प म रे म।

0: ओ सवरिया ओए होए ओ तेरी तिरछी नजरिया
1: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कतरिया ओ सवरिया।

0: आए करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय।

0: बचाऊंगी शोर बचाओ ओ मुर्गे ओ मुर्गे ओ कौवे, पीछे पीछे आते हो क्यों दिल के चोर, मान जाओ वरना मचाऊंगी शोर।
1: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़।
0: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय।

0: के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी, वो थी हम थे,
2: हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, हे याने याने याने प्यार हो गया।

हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो

हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

धीरे मैंने खींचा, आ हा हा, घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा, मैंने खींचा, आ हा हा। हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया। बाजू।

0: यूं ही साथी
1: है बंदी मुट्ठी लाख की और
2: रेडियो चुनाव की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: बंदी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: डाल दे जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: hey! जो समझा उसी की मच धूम जो समझा उसी की मच धूम
0: बाजू।

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना। अब ना ही कोई उम्मीद, ना ही आंखों में कोई सपना।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

0: आते।
1: गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।